बारे में पता होना चाहिए, हमेशा ब्रेस्ट अवेयर रहें। कोई भी अनयूजुअल चेंज दिखे तो तुरंत ध्यान दें, जैसे ब्रेस्ट में लंप, साइज या शेप में फर्क, निप्पल अंदर की तरफ खींच जाना, स्किन का टेक्सचर बदल जाना। अगर ऐसा कुछ लगे तो जल्दी डॉक्टर से मिलो। ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी पकड़ लिया तो जिंदगी बच सकती है। प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी वेट और वेस्ट रखें, अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दें। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें www.cancer.gov.hk/breastcancer। अपना ख्याल रखें। ऑलराइटी, बढ़ते हैं जी हमारे पहले रिक्वेस्टेड गाने पर। ये जो गाना रिक्वेस्ट किया है, इट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड बाय बरार सिंह, एंड इन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया है मालवा बाय सिद्धू मूसेवाला, और डेडिकेटेड टू अमरीक, नोमी, पठान, हैरी एंड पंकज। रिक्वेस्ट पर्सन इज पंजग्राही। ओके, एनीवेज, एंजॉय कीजिए ये गाना। दिस इज मारवा बाय सिद्धू मूसेवाला।

एंड वेलकम बैक। आते हैं हमारे दूसरे अनाउंसमेंट पर। दिस इज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ऑफ द लेबर डिपार्टमेंट। क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो और सोच रहे हो कि कहां से मदद और सलाह मिलेगी? लेबर डिपार्टमेंट ने पूरे हांगकांग में 10 जॉब सेंटर्स खोले हैं। यहां जॉब सीकर्स को बिल्कुल फ्री मदद मिलती है। किसी भी जॉब सेंटर में जा

जाकर आपको लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वहाँ एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हैं, अपनी जॉब की ज़रूरतों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और उनके स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं। खासकर एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी लाया है। इसमें रजिस्टर्ड सोशल वर्कर्स आपको एक स्टॉप सोल्यूशन देंगे, पूरी मदद केस बाय केस अप्रोच से। लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज इंग्लिश और चाइनीज में है। अगर आप इंग्लिश या चाइनीज नहीं बोल पाते तो वो आपके लिए फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस भी अरेंज कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए www.jobs.gov.hk/em या इंटरएक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसको यूज करें। बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। दिस सॉन्ग इज रिक्वेस्टेड बाय सकलैन बिलाल और गाने का नाम है जी दिल दी रानी एंड इट्स बाय गीता जैलदार। So enjoy kijiye ye gana. It's dedicated to Jesse and Dollar from Saklan, Sunny Wakar, Maniman. All right, enjoy the song.

Okay, moving on to our next announcement. This is prevention of seasonal influenza, COVID-19 and other respiratory illnesses. इस सीजन में अलर्ट रहे, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कोविड-19 और दूसरे सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं। अपनी सफाई और घर परिवार की हाइजीन का ख्याल रखें। खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक को ढक लें। हाथ लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकंड्स तक अच्छे से धोएं। अगर तबीयत खराब लगे तो मास्क पहने और तुरंत डॉक्टर से मिलें। गवर्नमेंट का 2025 और 26 सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। हर साल फ्लू वैक्सीन लगवाएं, जितनी जल्दी उतना बेहतर। एलिजिबल लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है। कोविड-19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे रेजिडेंशियल केयर होम्स वाले, 65 साल के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के क्रॉनिक पेशेंट्स, इम्यूनिटी कमजोर लोग और प्रेग्नेंट महिलाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट कीजिए www.chp.gov.hk। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ओके, कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग। ये हरप्रीत ढिल्लों ने गाना रिक्वेस्ट किया है। गाने का नाम है सीईओ बाय चीमा वाई, डेडिकेटेड टू बाची बाबा हैरी सभी गुरु गुरी तुम ताओ, माई नेम हैप्पी कैरो। ओके, एंजॉय द सॉन्ग। दिस इज सीईओ बाय चीमा वाई।

अगला अनाउंसमेंट ये है द वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम WFA। वर्किंग फैमिली अलाउंस स्कीम जिसे शॉर्ट में WFA कहते हैं, अब एप्लीकेशन के लिए खुला है। ये हाउस होल्ड के नाम पर अप्लाई होता है, पूरा हाउस होल्ड हांगकांग रेजिडेंट होना चाहिए। अगर आपके घर वालों के टोटल वर्किंग आवर्स इनकम और एसेट्स लिमिट के अंदर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक महीने में एक से ज़्यादा जॉब्स के वर्किंग आवर्स काउंट किए जा सकते हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों। अलाउंस के टाइप्स, अगर टोटल 144 आवर्स या उससे ज़्यादा हैं तो वो बेसिक अलाउंस के लिए अप्लाई कर

डॉलर पर चाइल्ड पर मंथ है। नोट कीजिए कि ये जो घर WFA ले रहे हैं वो साथ में कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस नहीं ले सकते। पूरी डिटेल्स इनकम एसेट लिमिट्स और एलिजिबिलिटी के लिए वेबसाइट चेक कीजिए www.wfa.gov.hk। कोई सवाल हो तो 24 आवर हॉटलाइन पर कॉल कीजिए, नंबर है जी 2558-3000। ओके, बढ़ते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। खान भाई ने ये रिक्वेस्ट किया है, अर्न मिलो बाय गुलाब सिद्धू, डेडिकेटेड टू बाय अमेरिका, नोमी सिकंदर पंकज। एंजॉय द सॉन्ग गाइस।

आ गए जी हमारे आखिरी अनाउंसमेंट पर. दिस इज आवर लास्ट अनाउंसमेंट. मेक प्रायर वर्क अरेंजमेंट्स इन टर्म्स ऑफ एडवर्स वेदर एंड एक्सट्रीम कंडीशंस. तूफान बारिश एक्सट्रीम कंडीशंस के टाइम में पहले से काम की प्लानिंग कर लो. एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय से बात करके अरेंजमेंट्स कर लें. ऑफिस कब आना है, कब छुट्टी मिलेगी, काम कब शुरू होगा और घर से काम करने का ऑप्शन भी है. गवर्नमेंट जब एक्सट्रीम कंडीशंस अनाउंस करे तो सिर्फ वो लोग जो कंपनी ने स्पेशली बोला हो सेफ तरीके से ऑफिस आए. बाकी सब जहां हो वहीं रुक जाओ या सेफ जगह पर रहो. तुरंत बाहर मत निकलें. ज़्यादा डिटेल्स के लिए लेबर डिपार्टमेंट का कोड ऑफ प्रैक्टिस देखें. ऑलराइट गाइस, इसी के साथ हमारे

आते हैं अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. FIHK ने गाना रिक्वेस्ट किया है. गाने का नाम है बदनामी बाय नोमी जट. दिस इज डेडिकेटेड टू यू रोमी भाई, पप्पू वैस एंड भट्ट साहब एंड फेरी वैस, मिर्जा जुबैर खान, रंजा अंसर एंड गुरु गुरसेवक सिंह फ्रॉम FIHK.

to those people that he really loves. And गाने का नाम है जी टू झूम, संग बाय अबीदा परवीन. गाना बहुत अच्छा है. आई होप यू लाइक द सॉन्ग, सो एंजॉय द सॉन्ग गाइस.

0: एंड आते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर। ये है जी, रिक्वेस्ट किया सनी जसवंत ने, एंड दिस सॉन्ग इज सेंड फ्रॉम दिल्ली इंडिया फॉर डेडिकेटेड सॉन्ग टू अमेरिका हांगकांग, पंकज सिंह। सॉन्ग गाने का नाम है टॉप द शिकारी बाय सुरजीत खान फ्रॉम सनी जसवंत, अमृत संधू, तिहाड़ जेल नंबर 4, नीरज भवाना ग्रुप, दिल्ली। Alrighty, enjoy the song. This is Top the Shikari by Surjeet Khan.
1: We got another one, baby. Big Bird, Surjeet Khan.

ओके आते हैं जी अगले गाने पर. दिस इज बाय असम मतलूब. इन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया है स्नेक बाय चीमा वाई एंड गुरसिद्धू, डेडिकेटेड टू पप्पो वाइस फारी वाइस अब्दुल्ला बट मिर्जा जी बिलाल एंड वहीद शेडी. चलो जी गाना एंजॉय कीजिए. दिस इज स्नेक बाय चीमा वाई एंड गुरसिद्धू.

वेलकम बैक गाइस. अगला गाना रिक्वेस्ट किया है यासीन मोहम्मद ने, एंड ही हैज रिक्वेस्टेड द सॉन्ग कार्टेल बाय चीमा बवाई एंड अगेन गुरसिद्धू फॉर चीमा अरसलान पेंडा अतीक एंड माय ब्रदर चीमा जे फ्रॉम स्टैनली एंड पिक्योक.